0: क्या उनकी अकलें उनको यही सिखाती हैं, बल्कि ये लोग हैं ही शरीर।
1: अम यकूलून तकव्वलहू बल ला युमिनून,
0: क्या कुफार कहते हैं कि इन पैगंबर ने कुरान अज खुद बना लिया है, बात यह है कि ये खुदा पर ईमान नहीं रखते।
1: फल्यतू बिहदीसिम मिथलिही इन कानू सादिकीन,
0: अगर ये सच्चे हैं तो ऐसा कलाम बना तो लाएं।
1: अम खुलिकू मिन गैर शैइन अम हुमुल खालिकून,
0: क्या ये किसी के पैदा किए बगैर ही पैदा हो गए हैं, या ये खुद अपने तई पैदा करने वाले हैं।
1: अम खलकुस समावाति वल अर्द बल ला यूकिनून,
0: या उन्होंने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, नहीं बल्कि ये यकीन ही नहीं रखते।
1: अम इंदहुम खजाइन रब्बिक अम हुमुल मुसैतिरून,
0: क्या उनके पास तुम्हारे परवरदिगार के खजाने हैं, या ये कहीं के दारोगा हैं।
1: अम लहुम सुल्लमुन यस्तमिउन फीही फल्याति मुस्तमिउहुम बिसुल्तानिन मुबीन,
0: या उनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आसमान से बातें सुनाते हैं, तो जो सुनाता है वो सरीह सनद दिखाए।
1: अम लहुल बनातु वलकुमुल बनून,
0: क्या खुदा की तो बेटियां और तुम्हारे बेटे।
1: अम तसअलुहुम अजरन फहुम मिन मग्रमिन मुथ्कलून,
0: ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, क्या तुम उनसे सिलह मांगते हो कि उन पर तावान का बोझ पड़ रहा है।
1: अम इंदहुमुल गैब फहुम यक्तुबून,
0: या उनके पास गैब का इल्म है कि वो उसे लिख लेते हैं।
1: अम युरीदून कैदन फल्लजीन कफरूहुमुल मकीदून,
0: क्या ये कोई दाव करना चाहते हैं, तो काफिर तो खुद दाव में आने वाले हैं।
1: أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ,
0: क्या खुदा के सिवा उनका कोई और माबूद है, खुदा उनके शरीक बनाने से पाक है।
1: वा

0: हुदा।
1: वो तो सिर्फ नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने घड़ लिए हैं। खुदा ने तो उनकी कोई सनद नाजिल नहीं की। ये लोग महज जन्न फासिद और ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चल रहे हैं, हालांकि उनके परवरदिगार की तरफ से उनके पास हिदायत आ चुकी है।
0: अम लिल इंसान मा तमन्ना,
1: क्या जिस चीज की इंसान आरजू करता है वो उसे जरूर मिलती है।
0: फलिल्लाहिल आखिरतु वल औला,
1: आखिरत और दुनिया तो खुदा ही के हाथ में है।
0: वकम

0: उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और ना किसी जिन से।
1: फबिअय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ,
0: गुनहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे तो पेशानी के बालों और पांवों से पकड़ लिए जाएंगे।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ,
0: यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाते थे।
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن,
0: वो दोजख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: वलिमन खौफ मकाम रब्बिहि जन्नतान,
0: और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा उसके लिए दो बाग हैं।
1: फबिअय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: अफनान,
0: उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।
1: फबिअय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: फीहिमा अयनान तजरियान,
0: उनमें दो चश्मे बह रहे हैं।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ,
0: उनमें सब मेवे दो दो किस्म के।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: मुत्तकीन अला फुरुशिन बतायनुहा मिन इस्तबरकिन वजनल जन्नतैन दान,
0: अहले जन्नत ऐसे बिछौनों पर जिनके अस्तर अतलस के हैं तकिया लगाए हुए होंगे और दोनों बागों के मेवे करीब झुक रहे हैं।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: فِي

0: और कहा करते थे कि भला जब हम मर गए और मट्टी हो गए और हड्डियां ही हड्डियां रह गए तो क्या हमें फिर उठना होगा।
1: अवआबाउन अलअवलून,
0: और क्या हमारे बाप दादा को भी।
1: قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ,
0: कह दो कि बेशक पहले और पिछले।
1: لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ,
0: सब एक रोजे मुकर्रर के वक्त जमा किए जाएंगे।
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ,
0: फिर तुम ऐ झुटलाने वाले गुमराहो।
1: لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُّومٍ,
0: थोहर के दरख्त खाओगे।
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ,
0: और उसी से पेट भरोगे।
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ,
0: और उस पर खौलता हुआ पानी पियोगे।
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ,
0: और पियोगे भी तो इस तरह जैसे प्यासे ऊंट पीते हैं।
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ,
0: जजा के दिन ये उनकी ज़ियाफ़त होगी।
1: نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ,
0: हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया है तो तुम दोबारा उठने को क्यों सच नहीं समझते।
1: أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ,
0: देखो तो कि जिस नुत्फे को तुम औरतों के रहम में डालते हो।
1: أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ,
0: क्या तुम उससे इंसान को बनाते हो या हम बनाते हैं।
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ,
0: हमने तुम में मरना ठहरा दिया है और हम इस बात से आजिज नहीं।
1: عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ,
0: कि तुम्हारी तरह के और लोग तुम्हारी जगह ले आएं और तुमको ऐसे जहान में जिसको तुम नहीं जानते पैदा कर दें।
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ,
0: और तुमने पहली पैदाइश तो जान ही ली है फिर तुम सोचते क्यों नहीं।
1: أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ,
0: भला देखो तो कि जो कुछ तुम बोते हो।
1: أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ,
0: तो क्या तुम उसे उगाते हो या हम उगाते हैं।
1: لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ,
0: अगर हम चाहें तो उसे चूरा चूरा कर दें और तुम बातें बनाते रह जाओ।
1: إِنَّا لَمُغْرَمُونَ,
0: कि हाय हम तो मुफ्त तावान में फंस गए।
1: بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ,
0: बल्कि हम हैं ही बेनसीब।
1: أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ,
0: भला देखो तो कि जो पानी तुम पीते हो।
1: أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ,
0: क्या तुमने उसको बादल से नाजिल किया है या हम नाजिल करते हैं।
1: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ,
0: अगर हम चाहें तो हम उसे खारी कर दें फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते।
1: أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ,
0: भला देखो तो जो आग तुम दरख्त से निकालते हो।

0: जान रखो कि दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा और जीनत और आराइश और तुम्हारे आपस में फख्र और सताइश और माल और औलाद की एक दूसरे से ज्यादा तलब और ख्वाहिश है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे बारिश के उससे खेती उगती और किसानों को खेती भली लगती है, फिर वो खूब जोर पर आती है, फिर ऐ देखने वाले तू उसको देखता है कि पक कर जर्द पड़ जाती है, फिर चूरा चूरा हो जाती है और आखिरत में काफिरों के लिए अजाब शदीद और मोमिनों के लिए खुदा की तरफ से बख्शिश और खुशनुदी है, और दुनिया की जिंदगी तो मताए फरेब है।
1: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم।
0: बंदो अपने परवरदिगार की बख्शिश की तरफ और जन्नत की तरफ जिसका अर्ज आसमान और जमीन के अर्ज का सा है और जो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो खुदा पर और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए हैं, लपको ये खुदा का फजल है जिसे चाहे अता फरमाए और खुदा बड़े फजल का मालिक है।
1: मैं

ताकि जो मतलब तुमसे फौत हो गया हो उसका गम न खाया करो और जो तुमको उसने दिया हो उस पर इतराया न करो और खुदा किसी इतराने और शेखी बघारने वाले को दोस्त नहीं रखता। अल्लाह।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: सामईन, वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद।
2: सामईन, वर्क गर्दानी के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अबू जहल कभी कभी रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरान सुनता था, लेकिन बस सुनता ही था, ईमान और इताअत और अदब व खुशियत इख्तियार नहीं करता था। वो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बात से अजियत पहुँचाता और अल्लाह की राह से रोकता था, फिर अपनी इस हरकत और बुराई पर नाज करता और फख्र करता हुआ जाता।

0: ना था। गोया इसने कोई काबिल जिक्र कारनामा अंजाम दे दिया है। कुरान मजीद की ये आयात इसी शख्स के बारे में नाजिल हुई। ना इसने सदका दिया ना नमाज पढ़ी, बल्कि झुठलाया और पीठ फेरी। फिर वो अकड़ता हुआ अपने घर वालों के पास गया। तेरे खूब लायक है, खूब लायक है। इस शख्स ने पहले दिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा तो उसी दिन से आपको नमाज से रोकता रहा। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ रहे थे कि इसका गुजर हुआ। देखते ही बोला, मोहम्मद, क्या मैंने तुझे इससे मना नहीं किया था? साथ ही धमकी भी दे दी। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डांट कर सख्ती से जवाब दिया। इस पर वो कहने लगा, ए मोहम्मद, मुझे काहे की धमकी दे रहे हो? देखो, खुदा की कसम, इस वादिये मक्का में मेरी महफिल सबसे बड़ी है। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, अच्छा तो वो बुलाए अपनी महफिल को, हम भी सजा के फरिश्तों को बुलाए देते हैं। एक रवायत में मस्कूर है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका गिरेबान गले के पास से पकड़ लिया और झिंझोड़ते हुए फरमाया, तेरे लिए बहुत ही मौजू है। इस पर अल्लाह का ये दुश्मन कहने लगा, ए मोहम्मद, मुझे धमकी दे रहे हो? खुदा की कसम, तुम और तुम्हारा परवरदिगार मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं मक्के की दोनों पहाड़ियों के दरमियान चलने फिरने वालों में सबसे ज़्यादा मुअज्ज़ज़ हूँ। बहरहाल इस डांट के बावजूद अबू जहल अपनी हमाकत से बाज आने वाला ना था, बल्कि इसकी बदबख्ती में कुछ और इजाफा ही हो गया। चुनाचे सही मुस्लिम में है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक बार सरदारान कुरैश से अबू जहल ने कहा, मोहम्मद, आप हजरात के रूबरू अपना चेहरा खाक आलूद करता है? जवाब दिया गया, हाँ। इसने कहा, लात व उज्जा की कसम, अगर मैंने उसे इस हालत में देख लिया तो इसकी गर्दन रौंद दूंगा और इसका चेहरा मट्टी पर रगड़ दूंगा। इसके बाद इसने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा। इस जाम में चला कि आपकी गर्दन रौंद देगा, लेकिन लोगों ने अचानक क्या देखा, वो एड़ी की बल पलट रहा है और दोनों हाथ से बचाव कर रहा है। लोगों ने कहा, अबुल हुकुम, तुम्हें क्या हुआ? इसने कहा, मेरे और उसके दरमियान आग की एक खंदक है, होलनाकियाँ हैं और पर हैं। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो मेरे करीब आता तो फरिश्ते इसका एक एक उज्व उचक लेते। सामईन, ये थी हमारी आज की नशिस्त। इंशाअल्लाह मजीद वर्गर्दानी का सिलसिला हम आने वाली नशिस्त में जारी रखेंगे। इसके साथ कासिम भट्टी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगबान।
1: आपकी समातों से टकराती ये आवाज़ UCP की दुनिया FM 92.6।

0: की ताजगी का सफर तय कीजिए।
1: अलैका या सैयदी,
0: यूसीपी की दुनिया के साथ। तो सुनते रहिए
1: सैयद अल अवलीन वल आखिरीन।
0: FM 92.6.